है किन लायो हराई जाने माया, कसलाई लायो खै अधुरो गराई जाने माया, अहो पराई जाने माया, अहो पराई जाने माया।

0: खुल्यो खुल्यो खुल्यो
1: तपाईको आफ्नै शहर कोहलपुरमा टीवीएस शोरूम खुल्यो।
0: स्टाइल, पावर र भरोसा अब एकै ठाउँमा
1: कोहलपुरमै पाइन्छ। टीवीएस का नयाँ बाइक र स्कूटर, दमदार परफर्मेन्स र उत्कृष्ट माइलेज का साथ सेल्स सर्भिस र स्पेयर्स, सबै सुविधा एउटै छानामुनि, साथमा फाइनान्सको सुविधा पनि।
0: आजै आउनुहोस् नेपाल अटो पार्ट्स एन्ड सप्लायर्स, कोहलपुर 11 बाँकी।
1: हजुर, नेपाल अटो पार्ट्स, भरोसाको यात्रा। सम्पर्क नम्बर 98125 26 711 र 98 20 18 37 86। नेपाल अटो पार्ट्स, भरोसाको यात्रा।
2: कुष्ठ रोग अभिशाप न होए, इके उपचारों भी संभव है। वही से कुष्ठ रोग के बारे में हम सब लोगन के यहाँ जानकारी पावे जरूरी है।
3: शरीर में यहाँ न खजवाए, छुए से जान न मिले, लाल और खर्रहा दाग दिखाए तो कुष्ठ रोग के शंका कई सका जाते। असल लक्षण अपनक या तो दूसरे के यहाँ दिखाए तो जुड़तीन स्वास्थ्य संस्था में यहाँ जाए के जाँच करावा जाए। सब स्वास्थ्य संस्थान में यहाँ कुष्ठ रोग के दवाई निःशुल्क मिलत है।
2: समय में यहाँ उपचार यानी दवाई किए से कुष्ठ रोग पूर्ण रूप में यहाँ नीक हो, एक साथ शारीरिक अपांगता होए से भी बच सका जाता है।
3: जानकारी रहक चाहिए। कुष्ठ रोग बीमारी से प्रभावित और उनके परिवार के यहाँ भेदभाव करब कानूनी अपराध हो। साइनिंग अस्पताल INF नेपाल बाके द्वारा जनहित में जारी संदेश।
4: यो कृष्ण सार FM
5: 94 मेगाहर्ज, कृष्णसार जत्तिकै तेज।

आजे अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतानी प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर, नेपाल का अपने क्यूआर।

आज अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतानी प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर, नेपाल का अपने क्यूआर।

जे अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतानी प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर, नेपाल का अपने क्यूआर।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 12 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: विवेक जिना क्या संघारु देव शांत होकर ढ्यूनी चल का बैठो हमरा टुहना स्वास्थ्य केंद्र पुगेबी अई पारस तू घरक दाबू हन मोटरसाइकिल ले खाए कहो त
1: हो विवेक हन यहाँ खुला ठाउ म सुताई ढ्यूर झल्यांग झुलुंग नि करा खन मारी कापी ले ओही हन हक दिहेटु किल्ली म काट राखल सुइटी बा काटल ठाउ न छुओ चलाई निउइ ना
0: आप मई विवेक हन सजिल हुइना कइ ख वाकर कसके ल पेटी ता धीरे धीरे खोल देटु ओ घरी वो मुंडरी फेक हार देहम
1: बिठा रोशन मई इहे बेला विवेक क जुत्ता ओ मजा धीरे धीरे निकाल देहेटु
0: ढ्यूरचसिन सापन का दसाई खतरनाक नि रह समय में जो उपचार कराई सेक लसे बिखा सपन का कातल मन यहाना फे बचाई सेक जिठा सपवा कटलक मन यहाना झट्टा से झट्टा उपचार केंद्र में पुगाई सेक लसे वही हना भारी क्षति हुईना से जोगाई सेक जिठा
2: विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाक लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कैख पत्ता लगाइक लाक आधिकारिक वेब पेज snackbite.nepal.org में जाख आवश्यक जानकारी लिहे सेक जिठा
3: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश

0: आज अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतान प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर, नेपाल का अपने क्यूआर।
1: ओहो आज डाई है नहीं मजा लागत हो मजा से दवाई करे ना कहतो
2: ये तो ओकर लाग कांति आरोग्य अस्पताल जाई ना पश्चिम नेपाल के अनुभवी व उत्कृष्ट विशेषज्ञ चिरफार कैना डॉक्टर से विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा यह कांति आरोग्य अस्पताल नेपालगंज में मिलत।
1: ए बात ठीक कहलो साची की अस्पताल में का का सुविधा मिलत त
2: वहां त 24 घंटा इमरजेंसी सेवा दैनिक ओपीडी सेवा दूरबीन और लेजर प्रविधि से शल्यक्रिया जरल घाव उपचार करना संगे एनआईसीयू पीआईसीयू आईसीयू हाईटेक ऑपरेशन थिएटर हो सुरक्षित प्रसूति सेवा फे वहां पा जाए। छोट बच्चा हो भरखर जन्मल बच्चन के सामान्य से लेके जटिल रोग संगे सकु प्रकार के रोग के उपचार फे वहाँ कई जाए।
1: ए ओसिनो कल से वहाँ जाए मन फे ढुक्क हुईना चाहल रह
2: हो तो स्वास्थ्य हेरचाह कहले ठीक ठाउँ रोजना हो। कांति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज सक्कुमेरिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा अक्क ठाउँमा सम्पर्क नम्बर 081-535-717। कांति आरोग्य अस्पताल अपने हुकरन के स्वास्थ्य हमारी स्नेहा।
1: कान के समस्या बा उपचार कराइकला कहाँ ले जिना हो
2: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केन्द्र मा जाई न वहाँ ता अनुभवी चिकित्सक को वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक से हरेक दिन कान के परीक्षण हुई ओतराकेल कहाँ हो वहाँ तो लंबा समय से कान पकती रहना जीर्ण रोग काने ढूसी कान खजोइना कान कम सुनना कान दम्मा हुईना विटामिन के उपचार और परामर्श वो लंबा समय से कान पकती रहले कान के जालिम पाल परल कान हड्डी खैना रोग के ऑपरेशन कई के उपचार हुई वाकर संगे कान कम सुनना विटामिन के लाग कान में लगाइना सस्ता व महंगा ढेर प्रकार के कान के मशीन विटामिन के रोजाई अनुसार के उपलब्ध फे करा जाए जस्ते बीटीई सीआईसी आरआईसी जैसी मशीन फे वहाँ मिलत।
1: ए ओसिड हो कल से बुढ़ू हो वहाँ ले जाके उपचार करेले से वजह से सुनो से कही ट
2: एकदम समय में उपचार करेले से उपचार संभव बा बागेश्वरी स्वास्थ्य सेहार केन्द्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बांके संचालक पूरन चौधरी संपर्क नंबर 98-84-20-697 98-85-23-697 वो 98-014-83-697 बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में सहभागी हुई नियमित कान के जांच करी।
1: खुशी के खबर हमार शहर नेपालगंज में ढेर बरस से सेवा देती आयल नेपालगंज नेशनल अस्पताल में ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से रोज दिन स्वास्थ्य सेवा देती आयल बा ई अस्पताल में रोज दिन ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से ओपीडी सेवा देना के संगे ढेर सेवा देती रलेक जानकारी कराईटी
2: जस्तक सर्जरी के सक्कु उपचार प्रसूति व स्त्री रोग के सक्कु उपचार नसा व हड्डी रोग के सक्कु उपचार मस्तिष्क व मानसिक रोग के सक्कु उपचार छाला रोग के उपचार नाक कान घाटी रोग के सक्कु उपचार सेवा देती आयल बा
1: ओस्तक सुगर ब्लड प्रेशर मुटु रोग पेट छाती कलेजो संबंधी सक्कु उपचार पैथोलॉजी लैब सेवा वीडियो एक्सरे डिजिटल एक्सरे और सबको सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पतालक संगे हरेक महीनक अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल के सुगर और थायराइड रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमन ब्राल ऐना जानकारी फेन कराईटी
2: नोट ई अस्पतालम कार्यरत सबको डाक्टरन से हरेक महीनक अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा देना संगे जांच में 20% विशेष छूट के व्यवस्था करल बा। नेपालगंज नेशनल अस्पताल बीपी चौक नेपालगंज संपर्क नंबर 081-536-465 98-239-80-665 वो 9842 80465।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक एक बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: Jelly Bunny, yeah.
1: Extreme energy drink.
2: खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
3: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा हो, एक साथ हैं तमाम मेर के सेवा होत रहा जानकारी करावत रहा जात है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
3: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
3: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
3: शुगर ब्लड प्रेशर हृदय रोग पेट छाती कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है,
3: वीडियो एक्सरे डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं। हरेक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवश्यक जानकारी भी करावा जाता है।
2: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा ले साथ जाँच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
3: संपर्क नंबर 081-536-465, 98-239-80-665 और 98-482-80-465।
2: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
3: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाओ ना, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिकारी लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत है। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड ब्रामिल उनके इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी सीआईसी आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
2: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो?
3: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी बैरक के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 98-480-2697, 98-580-2397 और 98-014-83-697।
2: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
4: वाओ, प्लस टू परीक्षा पनि पास भयो, अब कुन कलेजमा भर्ना हुने होला?
5: ल है बधाई छ। अनि तिम्रो उज्जवल भविष्यका लागि उत्कृष्ट विकल्प नेपालगंज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसी छ नि।
4: ए हो र, त्यहाँ के पढ्न पाइन्छ त? अनि त्यहाँको विशेषता पनि भन्देऊ न।
5: त्यहाँ ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडीज बीबीएस तथा एसीसीए कार्यक्रमका लागि भर्ना खुल्ला भइसकेको छ। दक्ष तथा अनुभवी शिक्षकद्वारा गुणस्तरीय शिक्षण, वातानुकूलित एसी कक्षा कोठा, समृद्ध पुस्तकालय, अतिरिक्त क्रियाकलाप, नियमित फिल्ड भिजिट तथा औद्योगिक भ्रमण, आधुनिक शिक्षण वातावरण र विद्यार्थी मैत्री व्यवस्थापन सहित आफ्नो उज्जवल भविष्यको यात्रा सुरु गर्न सकिन्छ।
4: ल तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद, त्यसो भए म पनि यही भर्ना हुन्छु।
3: हजुर, प्लस टू परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण गर्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना। उच्च शिक्षाको उत्कृष्ट गन्तव्य नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसीमा ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडिज बीबीएस तथा एसीसीए कार्यक्रमका लागि भर्ना खुल्ला भइसकेको छ।
4: नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसी आदर्श ग्रुपद्वारा सञ्चालित। ठेगाना नेपालगञ्ज 10 बाँके औद्योगिक क्षेत्रको ठिक अगाडि। थप जानकारीका लागि सम्पर्क 98-580-36-577, 98-580-28-195 र 98-580-36-811। नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसी सफल भविष्यको बलियो आधार।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस तेज
1: काकी पाए लागी
2: खुश रहो भैया खुश रहो
1: आ रेडियो लिए घुमत हो
2: अरे इमा कोई प्रोग्रामवा सुने मारे रेडियो वाली ये बैठे हैं ना और का भैया
3: ए सैया मिले लर कैया में का करूं
1: तो काकी तू नहीं जाना था हम किरौमिया कार्यक्रम चना जोर गरम लेके आए थे किसी सारे फिल्म से दिन के 1 बजे।
2: अरे वाह भैया ये तो बहुत बढ़िया बात होगा। अब तो हम जाए थे सब गौवा मैया सबका बतेबे और सब जगह बतेबे कि चना जोर गरम आवत है कृषि सार एफएम 94 मेगाहर्ट्ज से दोपहर के 1 बजे से। और हाँ भैया सुनो ना यहू बतेबे कि राव मिया जी के साथ जरूर सुना जाए कार्यक्रम चना जोर गरम रेडियो के सारे एफएम 94 मेगाहर्ट्ज से दैनिक प्रोग्राम दोपहर 2 बजे से।

83 चार महीना सात गते है, दिन बीफे है, महीना सावन है। और आपके जो कार्यक्रम घर अंगना दुकान मकान खेत खरियान डाड़ पहाड़ देश विदेश यानी हर जगह पर चलत है, आपे के प्रिय रेडियो किसी सारे FM 94 मेगाहर्ट्ज़ से चलत है। तो जो हम क्वेश्चन रखे थे, क्वेश्चन के उत्तर दिया जाए, उत्तर दे वाले साथी का पुरस्कार दिया जाए। हाँ, तो आप लोग ध्यान से एकदम सुना जाइए, पुरस्कार दे वाले साथी के यहाँ लाखों करोड़ों के बीच में जोर से ताली लगाए कि उनका आप विजेता बनाओ जाए। तो साथी ऐसे पहला नंबर में है, आप लोग एकदम ध्यान से सुना जाइए, पहला नंबर में है कौन जानवर के कौन वस्तु के खून उज्जवल होते है, एक नंबर में है। और कौन विश्व के सबसे पातर फिजा कौन चीज़ के हुए कौन चीज़ हुए, एक नंबर। दो नंबर में है ऐसे नेपाली में भी बताए दिए हमारे नेपाली श्रोता लोग, अवधी भाषा नहीं समझते हैं, कहते मियाँ साहेब थोड़ा अवधि में बोल दिया जाए तो और अच्छा रही। जैसे कुन जीव को रगत से तो हुंचा, एक नंबर में है। दो नंबर में है विश्व को सभी भंदा पातलो वस्तु के हो। हाँ, तो साथी दोनों का सही उत्तर दिया जाए, उत्तर दे वाले साथी का पुरस्कार दिया जाए। तो इसे आप लोग नंबर में जुड़ा जाए, 0981415 के लाइन नेपाल के साथी, नेपाल से बाहर के साथी 0079701415 के लाइन में आ जाए। अब हम चली थे पहले प्यारा से कव्वाली के तरफ, छोटा सा व्यापारी विज्ञापन के बाद माँ सुना जी प्यारा से कव्वाली, नूरे इलाही फिल्म के कव्वाली है। दरबारे किश्तिया में बोलो कुछ जुबा से, सब कुछ तुम्हें मिलेगा ख्वाजा के आस्था से।

होए खातिर आज अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतानी प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर, नेपाल का अपने क्यूआर।

0: हाँ तो सरताई प्यारा से कवाली सुनागा जो नूरे इलाही फिल्म के कवाली रहा है दरबारे किश्तिया में बोलो कुछ जुबा से सब कुछ तुम्हें मिलेगा ख्वाजा के आस्था से। तो साथी ऐसे आप लोग नंबर में आ जाए सुना कैसी 415 122 के लिए नेपाल के साथी नेपाल से बाहर के साथी 00970 81 415 122 के लाइन में आवाज आई। तो साथी ऐसे आप लोगन से यही कहते हैं कि जो आज के क्वेश्चन है आप लोग एकदम उत्तर सही दिया जी सही दे वाले श्रोता का एकदम पुरस्कार दिया जी। कोई साथी मेरे फोन लाइन में आए रहा है।
1: हेलो
0: हाँ नमस्कार।
1: सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम सलाम।
1: मुन्ना सलमान है वार्ड नंबर 4।
0: हाँ मुन्ना जी जो क्वेश्चन है उत्तर दिया जाए।
1: अरे उत्तर ना जाने से मगर अपना सुना दो कवाली कमली वाले निगाहों में है।
0: कमली वाले का रोजा निगाहों में है।
1: हाँ
0: ठीक है सलाम अलैकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: हाँ साथी मुन्ना अंसारी रहे कहते हैं हम क्वेश्चन के जवाब ना दे पेबे तो साथी अब क्या करें जो नहीं जानी तो कहने कमली वाले का रोजा निगाहों में है। ठीक है हम कवाली आपका सुनेबे। तो ऐसे आप लोग नंबर में जुड़ा जाए जैसे पहला नंबर में है आप लोग एकदम ध्यान से सुना जाए। पहला नंबर में है कौन हाँ जीव के रगत यानी खून उज्जवल होता है। ऐसे दो नंबर में है विश्व के सबसे पातर वस्तु कौन चीज हुए। हाँ तो दोनों का सही उत्तर दिया जाए उत्तर देने वाले साथी का पुरस्कार दिया जी। पुरस्कार कहाँ से दिया जी आप लोग जाना जाते माना जाना हुआ ज्योति टेलर जो सदर लाइन में है वार्ड नंबर 4 में है जहाँ सब मेरे के लेडीज जेंट्स अड्डा ऑफिस कोट पैंट कुर्ता सलवार सफारी सूट दावरा सलवार सब मेरे कुशल कारीगर द्वारा कपड़ा सियाँ तैयार है वहाँ से आपका टी शर्ट दिया जी। तो इससे आप लोग नंबर में जुड़ा जाए सुने कैसी 415 122 के लाइन में आवाज आई। कोई साथी हमारे फोन लाइन में हाँ देखी को कहाँ से हैं उनका नमस्कार।
2: हेलो
0: नमस्कार नमस्कार आपके नाम।
2: हेलो
0: हाँ सुनीत है।
2: नमस्कार मियां जी।
0: नमस्कार नमस्कार आपके नाम।
2: शीशराम कोरी।
0: शीशराम जी और बढ़िया है।
2: हाँ बढ़िया है मियां जी।
0: हाँ कार्यक्रम में यहाँ जो क्वेश्चन रखा है वो सुने हो।
2: हाँ सुने बैठ सुने जाते हैं।
0: हाँ बतावा जाए उत्तर।
2: पहला नंबर के हो क्या कहते हैं लाल बेद।
0: हाँ
2: दूसरा नंबर के हो ग्राफीन।
0: हाँ सबसे पातर वस्तु कौन चीज हो है?
2: ग्राफीन।
0: ठीक है ना नमस्कार।
2: नमस्कार।
0: हाँ साथी रहा है हमरे शीशराम कोरी जो बांके पुरैना से जो पश्चिम पुरैना गिजरा पुरैना है। तो साथी एकदम दिमाग से आवाज आए एकदम दिमाग सही बुद्धि रखा जाए कहे से आपके जो सही आंसर रही यानी सही जवाब दिया जाए तो आपके नाम भी एकदम अमर हो जाते हैं विश्व के लोग सुनत हैं आइडियो वीडियो सब चलत है कार्यक्रम में यहाँ। तो साथी आप लोग एकदम नंबर में जुड़ा जाए सुने 81 415 122 के लाइन में आवाजी। नेपाल के साथी नेपाल से बाहर के साथी 00970 81 415 122 के लाइन में आवाजी। तो ऐसे ही कार्यक्रम जो आज आप लोग सुना जाते हैं ये जो 1 बजे से 3 बजे तक राहत है आपके प्यारा कार्यक्रम चनाजोर गरम है। तो ये कार्यक्रम में यहाँ ज्ञान गुण दिमाग बुद्धि के काम है। तो साथ ही कार्यक्रम में यहाँ पुरस्कार भी आपका दिया जाता है। तो एकदम सही उत्तर दिया जी उत्तर दे वाले साथी के यहाँ हम लोग एकदम लाखों करोड़ों के बीच में पुरस्कार देवे। कोई साथी मेरे फोन लाइन में आए रहे गए कि हैं गए गए हैं न। हाँ तो साथी आवे जाग तो इसे हो जाता है। तो साथी आप लोग नंबर में जुड़ा जाए और हमका अवधि माई जो पूरा 3 बजे तक साथ दे वाले हमरे प्रावधिक में यहाँ जो साथी जिगरी साथी हमरे चंदा जी हैं आप लोगन के यहाँ प्यारा प्यारा कव्वाली वगैरह नात वगैरह से आपका मनोरंजन भी कराओ थे। हमार आवाज़ ऑडियो वीडियो में पूरे विश्व में दिल लगाए के का पठौत हैं बहुत मेहनत सारा मेहनत तो प्रावधिक पर यहाँ है कहते हैं बोझ लेके चला जाता है मगर लादत को है खोपड़ी पर मूड़। तो ऐसे प्रादिक के ऊपर जानो भारी भार होते, यानी सारा उमा हर तरफ निगाह है उमा दौड़े पड़ा था कि कोई तरफ कोई चीज़ कट ना जाए, नंबर दब ना जाए। तो पूरा आप लोगन का 3 बजे तक साथ दिया जी। तो ऐसे कोई साथी आए रहे फोन लाइन में चले गए आवे जाए, तो ऐसे ही अब हम चले थे पहले व्यापारी विज्ञापन, विज्ञापन के बाद में आप लोग सुना जाए प्यारा से नातिया कव्वाली।
3: कोहलपुर क्षेत्रमा शैक्षिक उत्कृष्टताको केन्द्र बन्दै गएको डाइनामिक बहुमुखी क्याम्पसले गुणस्तरीय र व्यावहारिक शिक्षामा विशेष जोड दिँदै आएको छ। यहाँको अनुशासित वातावरण र विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण पद्धतिले सिकाइलाई सहज र प्रभावकारी बनाएको छ। डाइनामिक बहुमुखी क्याम्पसको मुख्य विशेषता भनेको अनुभवी शिक्षकहरू, अनुशासित वातावरण र अत्याधुनिक डिजिटल शिक्षण पद्धति हो। क्याम्पसले हरेक कक्षामा स्मार्ट बोर्ड मार्फत आधुनिक ढङ्गले अध्यापन गराउँदै आएको छ, जसले गर्दा विद्यार्थीहरूले यस संस्थालाई बढी रुचाउने गरेका छन्। उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि डाइनामिक बहुमुखी क्याम्पसले व्यवस्थापन संकायतर्फ बिबिएस र शिक्षाशास्त्र संकायतर्फ बिएड कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। यहाँ कम सुलभ शुल्कमै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिनुका साथै विद्यार्थीको नेतृत्व र व्यक्तित्व विकासका लागि विभिन्न तालिम, सेमिनार र कार्यशाला गोष्ठीहरू नियमित रूपमा आयोजना गरिन्छ। विशेष गरी स्नातक तहको तेस्रो र चौथो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गर्दै पढ्दै कमाउँदै भन्ने अवधारणा अनुरूप रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्ने र रोजगारदाताहरूसँग समन्वय गरी उनीहरूको भविष्य सक्षम बनाउने प्रयास क्याम्पसले गरिरहेको छ। यस संस्थाले विद्यार्थीहरूको सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै बिहान 6 बजेदेखि कक्षा सञ्चालन गर्ने र क्याम्पस भित्रै क्यान्टिनको व्यवस्था गरी सुरक्षित वातावरण प्रदान गरेको छ। 15 वर्षदेखि निरन्तर अध्यापन गराइरहेका अनुभवी प्राध्यापकहरूको संलग्नताले गर्दा यहाँको शिक्षाको गुणस्तर थप सुदृढ बनेको छ। भविष्य निर्माणमा प्रतिबद्ध रहेको यस संस्थाले यस क्षेत्रको शिक्षा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै विद्यार्थी र अभिभावकहरूको विश्वास जित्न सफल भएको छ।
4: होइन कौशल्या मेमोरियल अस्पताल यही थियो त।
5: ओहो बाजे, अब उता आएन, ठ्याक्कै यता हेर्नुहोस् त पूर्वपट्टि। हाम्रा सेवाहरू: इन्टरनल मेडिसिन तथा फ्यामिली फिजिसियन सेवा, हार्ट जोड्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ सेवा, नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ सेवा, प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा, नवजात शिशु तथा बाल रोग विशेषज्ञ सेवा, छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ सेवा, दाँत बङ्गारा तथा मुख सम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा, एकुपंक्चर तथा फिजियोथेरापी सेवा, 24 घन्टा रोड एक्सिडेन्ट इमर्जेन्सी सेवा, 24 घन्टा ल्याब एक्सरे र ख वर्गको एम्बुलेन्स सेवा, एयर कन्डिसन इमर्जेन्सी वार्ड, स्ट्यान्डर्ड वार्ड तथा क्याबिनहरू।
6: हजुर, कौशल्या मेमोरियल अस्पताल कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 हलदारपुर बाँके। सम्पर्क नम्बर 081-414-007 र 98-482-63-389।
7: ओहो, घर त बनायो तर आफ्नो मान्छे कोही आयो भने घर पत्ता लगाउने गाह्रो।
6: किन गाह्रो, मार्बल पत्थरमा नाम लेखाएर राखे पनि भइहाल्यो नि।
7: भन्न त सजिलो छ तर कहाँ खोज्न जाने होला?
6: तपाईँलाई थाहा छैन, नेपालगञ्ज फुलटेक्रा राप्ती रोडमा रहेको न्यू विश्वकर्मा कला सेन्टरमा मार्बल पत्थरमा नाम लेखाउनुका साथै तामा, पित्तलमा कम्प्युटरद्वारा नाम लेखाइ गरिन्छ। समिल र सामुदायिक वनको टाचा बनाउनुका साथै विभिन्न किसिमका मार्बल, सिमेन्टको मूर्ति पनि पाइन्छ नि।
8: प्रोप्राइटर राकेश कुमार विश्वकर्मा, व्यवस्थापक त्रिभुवन प्रसाद विश्वकर्मा, न्यू विश्वकर्मा कला सेन्टर, नेपालगञ्ज 5 बाँके।
5: सम्पर्क टेलिफोन नम्बर 081-536-410 र 98-480-26-435।

0: toilet pony, yeah. Extreme energy drink.
1: पिछले सारे फिल्म लगाए दो हमार पिया, पिछले सारे फिल्म लगाए दो हमार पिया।
2: रेडियो कृष्ण सार FM 94 मेगाहर्ट्ज़, कृष्ण सार जस तेज़।

0: हाँ तो सरताई प्यारा से कवाली सुनागा, खैर कवाली बहुत अच्छा रहा। तो इससे हमारे कोई फोन लाइन में साथी हैं, उनका स्वागत कैली। नमस्कार।
1: हेलो।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: हाँ आपके नाम?
1: राम खेलावन थारू।
0: कहाँ चले गए रहो?
1: हेलो।
0: हाँ बोलित है, आपका सुनाई नहीं आवत है?
1: आवाज तो नहीं कम आवत है।
0: आपके आवाज आवत है? अच्छा और राम खेलावन बताओ।
1: सब बढ़िया है, पेड़ के नीचे बैठे हवा खाई थे।
0: अकेले हो कि भौजी हैं?
1: अरे सब परिवार हैं, सब बैठ।
0: हाँ सबका नमस्कार कह दी हो ना? सबका नमस्कार हमार है।
1: हाँ सबके नमस्कार कह दी।
0: तो क्वेश्चन माँ जो हम आंसर लगा पूछा उत्तर दिया जाए।
1: अरे बताइए तो बढ़िया से बूझ नहीं पाए।
0: नहीं बूझ पाए?
1: हाँ।
0: अच्छा तो सुनो बूझियो बढ़िया से ना।
1: हाँ।
0: तो कह फिर ना कहो नहीं बूझ पाए।
1: हाँ हाँ।
0: जैसे कौन जीव के रगत उज्जल होत है ना?
1: कटहर के।
0: और विश्व के सबसे पातर वस्तु कौन चीज हो?
1: पानी
0: हो कटहर हो
1: और का
0: हो? पानी और कटहर है। ठीक है कटहर ना छोड़ो पकड़े बैठ रहे हो ना। ठीक है नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: हाँ साथी राम खेलावन थारू रहा है जो हमरे जमनी सतपुतिया से कहीं कटहर और पानी बताइन है। ठीक है तू जो कहते हैं बरसी चाहे जहाँ चुई वरौनिक तेरे तो सही गलत नीक बेकार जी के जौन दिमाग और ख्याल माँ आई वही बताए। तो साथी से आवाज आए सुने कैसी 415-122 के लाइन माँ आवाज आए कहे से कार्यक्रम जो आप लोगन के घर अंगना दुकान मकान खेत करियान डाड़ पहाड़ देश विदेश यानी हर जगह पर चलत है आप के प्रिय रेडियो किसी सारे FM जो 94 MHz से। हाँ तो साथी जैसे कुन जीव को रगत से तो हुंचा एक नंबर माँ है अब विश्व को सबै भंदा पातलो वस्तु के हो? हाँ मैंने विश्व में सबसे पातल वस्तु का हो तो कोई साथी है? नमस्कार।
2: नमस्कार।
0: हाँ आपके नाम?
2: दलाई प्रोफेसर राम किशन।
0: और राम किशन बताओ।
2: हाँ सब बढ़िया है अभी कितने हमारे नहीं बैठाई गए चार कट्ठा रही गए बैठाई थे आज।
0: हाँ तो दही पानी नहीं बरसते टोटा के किसान यार बाहर से जोर बटोर के बिगाह दस बिस्वा ऐसे लेथारी पथारी वही गाड़ा थे का करे। तो बलाए लेती हूँ हरेरी कराए ली तो हरेरिया देख मारे नहीं बलाए और का
2: तो काल है हरेरी काल बलाई गई ना
0: काल बलाई हो
2: काल बलाई बैठा
0: तो काल तो बेड़ावा ले अवे करी हो
2: पहले से।
0: अच्छा सब बनेगा लेवा ठीक है अल्लाह मालिक आपके खेती बाड़ी एकदम अच्छे से हो जाए बस यही दुआ है ना। हाँ तो कार्यक्रम में यहाँ जो क्वेश्चन है उत्तर दिया जाए।
2: पहले वाला है लाल देव।
0: हाँ
2: दूसरा है साबुन के फेना।
0: ठीक है नमस्कार।
2: नमस्कार।
0: हाँ साथी रहे हमरे राम किशुन बड़े ही जो डलाई पुरवा बाके से। तो साथी से सुने कैसी 415-122 के लाइन माँ आवाज आए कहे से कार्यक्रम जो आप लोगन के घर अंगना दुकान मकान खेत करियान डाड़ पहाड़ देश विदेश यानी हर जगह पर चला था। आज पुरवैया बहुत तगड़े से कहते हैं चर पुरवैया कैला हरा हो पिया सोई गे रतिया सोई गे बालम वही वाले हाल है पुरवैया लाहरा ही मेरे चलते कि स्टूडियो के अंदर हमरे आए के हाउ हाउ लागत है इतना अच्छा हवा कि अब का कहीं हमरे श्रोता लोग तो बगिया बिरवा वरौनी फका है तेरे बैठे खूब आनंद लेते हैं न चंदा जी। हाँ तो साथी अब हम चले थे पहले छोटा सा व्यापारी विज्ञापन। विज्ञापन के बाद में हम आप कार्यक्रम से मिले जुड़े रहा जी दूर ना जाओ जी तो फिर मिला जी। तो कव्वाली के बाद में जो विज्ञापन के बाद में कव्वाली या नात कुछ सुना जाए उसके बाद में हम आप फिर मिला जी।

0: Toilet Pony,
1: Extreme Energy Drink.
2: Beer Dental.
3: नेपालगञ्ज शहरमा सञ्चालित अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न बीर डेन्टलमा दाँत तथा मुख सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार काठमाडौँ तथा भेरी अञ्चल अस्पतालका अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आरके लामिछानेद्वारा उपचार गरिन्छ।
4: डाक्टर लामिछानेद्वारा गरिने विशेष उपचारहरू: दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधिद्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत ताउने, पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेँलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्र तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
3: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक, भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
4: फोन नम्बर 081-532-375।
5: नेपालकै एकमात्र अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगञ्जमा। सन् 2016 डाक्टर लियोनार्ड लिङ्को फाउन्डेसनद्वारा बेस्ट डाक्टर ओआरद्वारा सम्मानित डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठ, एनएमसी 19393, बिडिएस दिल्ली, एफएजिसी मणिपाल, सर्टिफाइड इम्प्लान्ट एन्ड लेजर डेन्टिस्ट्री अमेरिका, सर्टिफाइड बोटक्स एन्ड फिलर स्पेसलिस्ट युरोप, एडभान्स सर्टिफिकेट इन जेनरल डेन्टिस्ट्री क्यानाडा, मिनी रेजिडेन्सी इन इन्डो डेन्टिक्स साउथ कोरिया, यी विभिन्न देशहरूमा अध्ययन गरेका डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठद्वारा उपचार गरिने अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगञ्जमा।
3: विशेषताहरू: दुखेको दाँतहरू जराबाट नै भरेर नदुख्ने बनाउने, बच्चाहरूको दुखेको दाँत जराबाट भर्ने, किरा लागेको दाँतलाई भर्ने, दाँत निकाल्ने, दाँतमा खोल लगाउने र दाँत नभएको ठाउँमा दाँत हाल्ने, मेटल क्राउन, बाङ्गो दाँतलाई तार बाँधेर सिधा गर्ने, वृद्ध अवस्थामा भएको बुढाबुढीको पुरा दाँतको सेट लगाउने, दाँतलाई प्रत्यारोपण गर्ने, चाउरी परेको अनुहारलाई राम्रो पार्ने, आँखा तल खाल्टो भएकोलाई भर्ने, सबै उपचारहरू दूरबिनबाट गरिने, डिजिटल एक्सरे सेवा।
6: सम्पर्क गणपति क्लिनिक, सुर्खेत रोड, नेपालगञ्ज, नर्सिङ होम नजिकै कुसुम पेट्रोल पम्पको सामुन्ने, पासङलाम रोड जाने बाटोमा। फोन नम्बर 081-531-366 र 98-085-49-451।
7: हाय रे दिदिया, हमार टिहुनी बहुत पीरा थे, बहुत दवाई कराए डाले, नाई ठीक आते।
8: सुनो बहनी, खुशी के खबर,
9: अब ऑपरेशन के खातिर काठमांडू और लखनऊ दौरे धूपे न पड़ी। पश्चिम नेपाल में यहाँ एकमात्र आधुनिक अल्ट्रासाउंड के सुविधा है।
8: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में यहाँ मूत्र और दिल गुर्दा रोग के सब ऑपरेशन दूरबीन प्रविधि के द्वारा किया जाता है। और वहाँ पेट संबंधी सब मेर के दवाई, पित्त थैली के पथरी, अपेंडिस, हार्निया, हाइड्रोसील, बवासीर, फीसर, भगंदर जस पुरुष लोगन में यहाँ लिंग, ब्रिय और अंडकोश और मर्दांगनी के कमी हुए समस्या साथेन कैंसर संबंधी सब दवाई ऑपरेशन किया जात है। और जानत हो, हाथ गोड़ करिहाव, रीढ़, टिहुनी पिराप, झंझनाहट हो, नस पिराप, झमझमाप, हड्डी टूट फूट भवा है तो दवाई और ऑपरेशन के साथेन प्लास्टर बांधा जात है। महिला लोगन में यहाँ सफेद पानी बहाव, महीनावारी में यहाँ गड़बड़ी, निसंतानता, गर्भवती लोगन के नियमित चेक जांच, बच्चेदानी और स्त्री रोगन के सब मेर के दवाई के साथेन ऑपरेशन किया जात है। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
10: डॉक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता, कंसल्टेंट सर्जन, यूरो सर्जन, जनरल कैंसर, मूत्र रोग तथा मृगौला रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर राहुल मिश्रा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, हार्ट जोड़नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ।
8: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, सुर्खेत रोड, आदर्श नगर, नेपालगंज 10, बांके, वन कार्यालय के नेरेन, पेट्रोल पंप के पछुए। संपर्क नंबर 081-531-000।
11: अम्मा के दवाई करावे के है, लेकिन समझ में ना आवत है कि कौन अस्पताल मा ले जाए।
12: कांति आरोग्य अस्पताल है ये है, काहे चिंता लेत हो। पश्चिम नेपाल के अनुभवी और उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शैली चिकित्सक द्वारा विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा भी यहाँ उपलब्ध है।
11: अच्छा, माने अस्पताल में यहाँ कौन कौन सुविधा है? तो
12: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा, दैनिक ओपीडी सेवा, दूरबीन और लेजर पर विधि से शल्यक्रिया, जलेक घाव के उपचार करे साथ एनआईसीयू, पीआईसीयू, आईसीयू, हाईटेक ऑपरेशन थिएटर, सुरक्षित प्रसूति सेवा, बाल बालिका और नवजात बच्चन के सामान्य रोग से लेके जटिल रोग तक सब मेर के उपचार भी उपलब्ध है।
11: अस है तो अम्मा के यहाँ आज लेके जाये थे कांति आरोग्य अस्पताल में। यहाँ
12: कांति आरोग्य अस्पताल, सुर्खेत रोड, नेपालगंज, सब मेर के उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एक छत के नीचे। संपर्क नंबर 081-535-717।

0: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई।
1: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र जाओ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं। साथ ही कान कम सुने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसन मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
0: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
1: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 9848020697, 9858023697 और 9804483697।
0: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।

हाँ तो श्रोताई, जो छोटा सा व्यापारी विज्ञापन, प्यारा से कव्वाली, मदीने को जाने को जी चाहता है। खैर जो कार्यक्रम सुनागा, आप लोग अपने अपने दुकान मकान, खेत खलिहान, डाड़ पहाड़, देश विदेश यानी हर जगह पर आप के प्रिय रेडियो किसी सारे FM 94 मेगा हर से जो चलत है कार्यक्रम चना जोर गरम। तो साथी ऐसे कार्यक्रम में यहाँ जो हम क्वेश्चन रखा है, क्वेश्चन के उत्तर दिया जी, उत्तर दे वाले साथी का पुरस्कार दिया जी। पुरस्कार कहाँ से दिया जी, उसका आप लोगन का भी बताओ जाते है। जो आप लोगन के माना जाना हुआ जो ज्योति टेलर है सदर लाइन, वहाँ से आपका टी शर्ट दिया जाए। तो अब हम चले थे पहले छोटा सा व्यापारी विज्ञापन और 2 बजे के टेम चेक। टेम चेक के बाद में हम आप फिर मिला जी, सुनते रहा जी रेडियो किसी सारे FM के साथ ही मारा जी।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 2 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस्तेज।
1: आइ विवेक, उठ्यान घासक झपासोर जिन्छ हो।
2: आइ दे मर्गिनु मर्गिनु।
1: आइ संगरियान, एक घरी फुटबल बन्द कर त। विवेक खन वहाँ का हुइलन। वहाँ झपच्यारो ना जाओ कहटन हु।
3: ओ हेरो त, उहर सप्पा भागल। पाटल की का हो विवेक खन? ए हरी स्कूली फुटबल या रही लग ता, जन का दसा पो आपरलन।
2: देव आली मेन त सप्पा काटल। मुना
1: विवेक जिना क्या संघारू देव शांत होकर ढ्यूनी चल का बैठो। हमरा तु यहाँ स्वास्थ्य केंद्र पुगेबी। आई पारस तू घर दादू हना मोटरसाइकिल ले खाए कहो ता।
3: हो विवेक हना यहाँ खुला ठाउँ मा सुताई ढ्यूर झल्याङ झुलुङ निकरा खन मारी कापीले ओही हना हक दिहेटु फिल्ली मा काटला खल सोइटी बा काटल ठाउँ मा न छुओ चलाई निहुइन ना।
1: आप मई विवेक हना सजिल हुइना कइ ख वाकर कसके ल पेटी ता धीरे धीरे खोल देटु ओ घरी वो मुंडी फेक हार देहम।
3: बैठा रोशन मई यह बेला विवेक का जुटा वो मजा धीरे धीरे निकाल देहेटु।
1: ढ्यूर जसिन सापन का दसाई खतरनाक नि रह। समय में जो उपचार कराई सेक लसे बिखा सपन का काटल मन यहाँ फे बचाई सेक जिठा। सपवा कटलक मन यहाँ झट्टा से झट्टा उपचार केंद्र में पुगाई सेक लसे वही हना भारी क्षति हुईना से जोगाई सेक जिठा।
4: विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाक लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कैख पत्ता लगाइक लाक आधिकारिक वेब पेज snackbite.nepal.org में जाख आवश्यक जानकारी लिहे सेक जिठा।
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्रसँगको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेसनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
6: हमका बिहाके के खातिर सोफा दराज डाइनिंग जस सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे रहा है कहाँ जाये तो ठीक रही तनी बताए दियो हमका।
7: सुना जाए आपका हम बताई थे आप नेपालगंज में यहाँ अपने घर के खातिर ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जाते है तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब प्राली में यहाँ जावा जाए। हुआ पर यहाँ ऑर्डर के अनुसार बेड सोफा डाइनिंग टेबल ऑफिस टेबल ड्रेसिंग टेबल दराज जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है। उके साथन टिकाऊ सामान आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथन बनावा भी जात है।
6: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथन आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जात है।
7: एक दफी सेवा करे मौका दीन जाए। संपर्क के खातिर सुरखेत रोड नेपालगंज बांके संपर्क नंबर 9844885375 और 9808254037।
8: नींद ना हमको हाय जग
9: सोना है। कर्मचारी आवश्यकता बारे सूचना सूचना सूचना। यस बहुद्देश्य कृषि कम्पनीलाई केही कर्मचारी आवश्यक परेकाले तलको ठेगानामा सम्पर्क राख्नु होला। तपसिल पद सामाजिक परिचालक आवश्यक संख्या 10 जना बाँके 3 जना बर्दिया 3 जना दाङ 2 जना कपिलवस्तु 2 जना र रूपन्देही 2 जना पद कम्प्युटर अपरेटर 1 जना कम्प्युटरमा दक्ष वा डिप्लोमा गरेको काम गर्ने स्थान बाँके र बर्दियाका सबै पालिकाहरू आवश्यक योग्यता प्लस टू पास भई सवारी साधन चलाउन जान्ने तलब कामको आधारमा हुनेछ। फिल्डमा गर्नुपर्ने कार्य व्यवसायिक किसान समूह निर्माण गर्नुपर्ने 6 देखि 12 महिनासम्म त्यसपछि कम्पनीले अन्य पदमा कामको मूल्याङ्कन गरी बढुवा गर्नेछ। सोही बमोजिम तलब भत्ता पनि थप वृद्धि हुनेछ। किसान समूह निर्माण भएपछि सामूहिक कृषि व्यवसायको लागि डाटा सङ्कलन फारम भरी कम्पनीलाई बुझाउनु पर्नेछ। सम्पर्क ग्रीन रोज बहुद्देश्य व्यवसायिक कृषि फर्म प्राली नेपालगञ्ज बाँके मोबाइल नम्बर 9763998845।

0: Bunny, extreme energy drink.
1: सोचे भन्दा सस्तोमा हाई क्वालिटीका सोफा र फर्निचर चाहियो, आउनुहोस् सोफा हब नेपालगञ्ज।
2: हरेक सामानको खरिदमा 1,000 देखि 20,000 सम्म छुट, 10 देखि 15 वर्षसम्मको वारेन्टी, साथै फ्री डेलिभरीको सुविधा पनि।
1: अहिले थमाथम बिक्री भइरहेको छ। स्थान राजा चोक राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको अगाडि।
2: सम्पर्क 97051148470।
1: सोफा हब नेपालगञ्ज,
2: विश्वासमा नम्बर एक,
1: क्वालिटीमा सबैभन्दा बेस्ट।
3: भैया, बहुत दिन से महिनवारी में यहाँ गड़बड़ी, सफेद पानी बहाव और पेट पीराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं। कहाँ जाए तो बढ़िया रही।
4: हम भी पहले गैस्ट्रिक, बवासीर और पेट के समस्या से बहुत परेशान रहे। बाद में यहाँ नेपालगंज के मेडिकेयर क्लिनिक गए, वहाँ मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के समस्या के उपचार और ऑपरेशन एक ही जगह होते है। अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर से सेवा मिले के बाद अब बहुत आराम हुआ है।
3: सही, वहाँ का सेवा मिलत है तो भैया?
4: सुनो, हुआ औरतन के बांझपन, सफेद पानी, महीनावारी में गड़बड़ी, गर्भवती जांच, बच्चादानी और स्तन संबंधी समस्या के उपचार होते है। और पुरुष या अन्य बीमारी लोगों के खातिर गैस्ट्रिक, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, थायराइड, पित्त थैली और शरीर में यो गिल्टी और तमाम मेर के लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी सेवा भी उपलब्ध है।
3: हाँ, मेडिकेयर क्लिनिक में यहाँ वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक दूरबीन और लेजर सर्जन डॉक्टर कमर हसन अंसारी और वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुन निशा से सेवा देते हैं। आप भी आज ही कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नाम दर्ता कह के तह दिल हुआ जाए।
4: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगंज उप महानगर पालिका वाड़ा नंबर 11 बीपी चौक के नेरेन, उप महानगर पालिका के कार्यालय के लाइन में यहाँ। संपर्क नंबर 97 46 11 786 98 224 92 377।
5: सबके संयुक्त आवाज मेडिकेयर क्लिनिक, मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस्तेज
1: काकी पाए लागी
2: खुश रहो भैया खुश रहो
1: आ रेडियो लिए घूमत हो
2: अरे इमा कोई प्रोग्राम हुआ सुने मारे रेडियो वाले बैठे हैं ना और का भैया
3: ए सैया मिले लर कैया में का करूं
1: तो काकी तू नहीं जाना था हम किरोमिया कार्यक्रम चना जोर गरम लेके आई थे किसी सारे एफएम से
4: दिन के 1 बजे।
2: अरे वाह भैया ये तो बहुत बढ़िया बात होगा। अब तो हम जाए थे सब गंगा मैया सबका बतेबे और सब जगह बतेबे कि चना जोर गरम आवत है कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज से दोपहर के 1 बजे से। और हाँ भैया सुनो ना यहू बतेबे कि राव मिया जी के साथ जरूर सुना जाए कार्यक्रम चना जोर गरम रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज से दैनिक प्रोग्राम दोपहर 2 बजे से।

हाँ तो श्रोताई, छोटा सा व्यापारी विज्ञापन के बाद में फिर से स्वागत है कार्यक्रम में। तो आप लोग फटाफट नंबर में आ जाए 081-415-122 के लाइन आप लोगन के लिए एकदम दरवाज़ा खुला है। कैसे कार्यक्रम बस आप लोगन के प्यारा कार्यक्रम है चना जोर गरम, जिमा दिमाग बुद्धि के भी काम है। तो साथी ऐसे आप लोग नंबर में आवा जाए। हाँ, जो कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जफरुद्दीन और पप्पू जी, ज्योति टेलर जो सदर लाइन में है, जहाँ से आपका पुरस्कार टी शर्ट दिया जी, जहाँ सब मेर के लेडीज जेंट्स अड्डा ऑफिस कोट पैंट कुर्ता सलवार सफारी सूट दावरा सलवार सब मेर के कपड़ा असियत हैं, वहाँ से आपका टी शर्ट दिया जाए। तो पहला नंबर में यहाँ है, आप लोग एकदम सुना जी ध्यान से, कौन हाँ जीव के रगत यानी से तो जीव के रगत यानी से तो

0: होटल फ्रंट ऑफिस फूड एंड बेवरेज इवेंट व्यवस्थापन संबंधी व्यवहारिक ज्ञान
1: BITM बैचलर अफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट सूचना प्रविधि र व्यवस्थापन को उत्कृष्ट संयोजन सॉफ्टवेयर डेवलपर IT मैनेजमेंट डाटा विश्लेषक लगायत का क्षेत्र में करियर आधुनिक प्रविधि तथा व्यावसायिक प्रमाण पत्र का लागि बलियो आधार
0: BBS बैचलर अफ बिजनेस स्टडीज राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त लोकप्रिय कार्यक्रम बैंकिंग व्यवसाय लेखा वित्त मानव संसाधन तथा सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगारी का अवसर र व्यवस्थापन वित्त बजार व्यवस्थापन र लेखा संबंधी सुदृढ़ आधार
1: BASW बैचलर अफ आर्ट्स इन सोशल वर्क गैर सरकारी संस्था NGO अस्पताल विद्यालय तथा सामाजिक संस्थाहरूमा करियर का अवसर समाज सेवा नेतृत्व तथा समुदाय विकास संबंधी ज्ञान र सीप समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने अवसर
0: ब्राइटल्यान्ड कलेजका विशेषताहरू अनुभवी तथा दक्ष प्राध्यापक कक्षा कोठामा स्मार्ट प्रविधिको प्रयोग एयर कन्डिसनर एसीको सुविधा समय सापेक्ष तथा रोजगारमुखी पाठ्यक्रम इन्टर्नसिप तथा प्लेसमेन्ट सुविधा आधुनिक शिक्षण वातावरण र सफल पूर्व विद्यार्थी सञ्जाल तथा करियर परामर्श
1: नोट BHM र BITM को सीमेट फारम पनि खुलिसकेको जानकारी गराइन्छ सम्पर्क ब्राइटल्यान्ड कलेज नेपालगञ्ज 10 पासाङ लामु रोड फोन नम्बर 081-532-07 र 081-530-602 इमेल blc.npj@gmail.com वेबसाइट brightlandcollege.edu.np

0: हाँ तो श्रोता प्यारा से कव्वाली के बाद में आप लोगन का फिर से स्वागत है कार्यक्रम में। तो आप लोग एकदम आवाज आए नंबर में जुड़ा जाए कैसे कार्यक्रम जो आप लोगन के घर अंगना दुकान मकान खेत खरियान डाड़ पहाड़ देश विदेश जो आप लोगन के प्रिय रेडियो किसी सारे फिल्म से कोई साथी हमारे फोन लाइन में है। नमस्कार।
1: नमस्कार। नमस्कार।
0: आपके नाम?
1: नेपाल राजा मियाँ जी।
0: हाँ
1: नेपाल राजा।
0: नेपाल राजा?
1: हाँ
0: नेपाल राजा हो?
1: हाँ बलाकपुर से।
0: अच्छा ये
1: कोई तो और सुनावा जाए।
0: कोई हाथी वाले राजा है कोई घोड़ा वाले?
1: 365 हाथी ना बन जाए जंगल में मामा।
0: हाँ सागर।
1: हाँ 365 हाथी के राजा नेपाल से
0: सागर।
1: हाँ
0: कोई हाथी वाले राजा है कोई घोड़ा वाले राजा है
1: सगर?
0: कोई पेड़ पौधा वाले राजा है?
1: हाँ वही पेड़ पौधा राजा हाथी वाले राजा। तो मैंने और सुना
0: और बढ़िया है। कहाँ हो?
1: चतवन भाई दुखारित रहा।
0: अच्छा बिहार ले गया हो?
1: हाँ अब संजक में चौराहो मिलवे।
0: कहे बिहार?
1: अही है लौकी कुहरा करेला खीरा।
0: ठीक है तो कई बजे लावत हो?
1: अब 5 बजे मिलो वही फिर।
0: 5 बजे तब हमसे तुझे कहाँ तू अकौना हम पाही टांग नोच जे आवे जाही।
1: नहीं तो वही जी वही डर रहा हूँ तो है इधर से निकलो मटिया मोड़ ढकेलवा चौराहा गिर करो।
0: बंद कमरे में बंद कमरम बंद रहा जाता जब समय आई तब भाई निकले मिली।
1: हाँ बात तो सही
0: है नहीं?
1: हाँ हाँ बिल्कुल।
0: काते दादा थिर गुस्सा हथियार भैया थिर
1: कदे।
0: तो सागर और बतावा जाए जो क्वेश्चन है उत्तर दिया जाए।
1: हाँ बतावा जाए फटाफट।
0: हाँ
1: बताओ कैसे काम हो
0: आज के विजेता हम बन जाओ तू हिंद। जैसे कौन जीव के खून उज्जवल होता है एक नंबर में है और कौन और विश्व में जैसे विश्व के सबसे पातर वस्तु कौन चीज हो?
1: ये 2 नंबर के केला 1 नंबर के कटहर।
0: 2 नंबर के केला 1 नंबर के कटहर। खाओ केला
1: कटहर के जब तक केला उतने महीन धागा से भी पातर रहा है।
0: हाँ ठीक है ठीक है तो जी के दिल में जो ना आवा बताई
1: से तो बताइए करी है
0: ना।
1: हाँ
0: ठीक है नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: हाँ साथी सागर बहेलिया रहा ये जो हमरे बिलासपुर बाके से पेड़ पौधा वाले यानी जो फल फूल के यानी साग सब्जी के सब कहे के पेड़ पौधा जो धम्बोजी चौक में यहाँ जो फटफूट पर यानी बेचत हैं वो लगाना है फोन अपने बारी में इसे कहते हैं बिहाड़े उखाड़ा जाते मियाँ साहेब लौकी कुमड़ा करेला के। तो साथी इसे सुने कि 84-15 से बैज के लाइन में आ जाए नेपाल के साथी नेपाल से बाहर के साथी 00971-84-15-122 के लाइन में। और साथी एक खुशी की बात है जैसे आज जो ये सावन के महीना में यहाँ जो आज हमरे जन्मदिन के आज जो हमरे सावन के जन्मदिन आज हमारा है तो हमरे प्रादिक में यहाँ जो चंदा जी हैं हैप्पी बर्थडे के कहते मियाँ साहेब आपकी बजाय दी कैसे आपके आज जन्मदिन है तो आप बोल दिया जाए कि आज के दिन में हमारा जन्म भरा है सावन के अब हम अगले साल में प्रवेश होने वाले हैं। हाँ तो श्रोता आज के दिन हमारा जन्मदिन भवा रहा है जन्म रहा है आज के सावन के महीना आज ही दिन का हम जन्म ले रहा है तो अब हम अगले साल में कदम रखे वाले रख दिया है। तो साथी आप लोगन से यही कहते हैं कि आप लोगन का हमरे जन्मदिन के तरफ से आप सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हिंदू थारू पहाड़ी देश विदेश के जितने माँ बहने भाई बंधु हैं सब लोगन का हमरे जन्मदिन के बहुत ढेर सेगर आप लोगन का मुबारकबाद हमरे प्रार्थी भी आपका हैप्पी बर्थडे जो जन्मदिन के बजाय दिए हैं।

0: toilet bunny, yeah. Extreme energy drink.
1: नाक कान र घाँटीका रोगीहरूको लागि विशेष सूचना।
2: फेरी अञ्चल अस्पतालमा लामो समय काम गरी सेवा निवृत्त प्रमुख कन्सल्टेन्ट ईएनटी विशेषज्ञ डाक्टर रमेश कुमार श्रेष्ठ र हाल फेरी अञ्चल अस्पतालमा नाक कान घाँटी विभागमा कार्यरत ईएनटी कन्सल्टेन्ट डाक्टर सगुन श्रेष्ठसँग उपचारको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्जमा हप्ताको सातै दिन सेवा उपलब्ध छ। हाम्रा थप सेवाहरू एक्सरे, इन्डोस्कोपी, प्रयोगशाला, अडियोग्राम तथा आवश्यक परेको खण्डमा बिरामीलाई अपरेसनको पनि व्यवस्था छ। विस्तृत जानकारीको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्ज, सम्पर्क फोन नम्बर 081531380, मोबाइल 9850303479 र 9840213780।
3: अम्मा के दवाई करावे के लेकिन समझ में ना आवत है कि कौन अस्पताल मा ले जाए।
4: कांति आरोग्य अस्पताल है ये है, काहे चिंता लेत हो। पश्चिम नेपाल के अनुभवी और उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शैल्य चिकित्सक द्वारा विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा भी यहाँ उपलब्ध है।
3: अच्छा, मनी अस्पताल में यहाँ कौन कौन सुविधा है? तो
4: 2400 घंटा इमरजेंसी सेवा, दैनिक ओपीडी सेवा, दूरबीन और लेजर प्रविधि से शल्यक्रिया, जलेक घाव के उपचार करे साथ NICU, PICU, ICU, हाईटेक ऑपरेशन थिएटर, सुरक्षित प्रसूति सेवा, बाल बालिका और नवजात बच्चन के सामान्य रोग से लेके जटिल रोग तक सब मेर के उपचार भी उपलब्ध है।
3: अस है तो अम्मा के यहाँ आज लेके जाये थे कांति आरोग्य अस्पताल में। यहाँ
4: कांति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज, सब मेर के उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एक छत के नीचे। संपर्क नंबर 081535717।

0: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई।
1: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र जाऊ ना, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
0: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
1: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र प्राली नेपालगंज फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 9848206697, 9858023697 और 9804483697। बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
0: खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
1: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा हो एक साथ तमाम मेर के सेवा होता रहा जानकारी करावा चाह जाता है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, पेट, छाती, कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है,
1: वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं। हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवश्यक जानकारी भी करावा जाता है।
0: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा ले साथ ही जाँच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
1: संपर्क नंबर 081536465, 9842888665 और 9842888465।

0: हाय रे दीदिया, हमार टिहुनी बहुत पिरात है, बहुत दवाई कराए डाले, नाय ठीक आते।
1: सुनो बहनी, खुशी के खबर।
2: अब ऑपरेशन के खातिर काठमांडू और लखनऊ दौरे धूपे न पड़ी। पश्चिम नेपाल में यह एकमात्र आधुनिक अल्ट्रासाउंड के सुविधा है।
1: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में यह मूत्र और दिल गुर्दा रोग के सब ऑपरेशन दूरबीन प्रविधि के द्वारा किया जाता है। और हुआ पेट संबंधी सब मेर के दवाई, पित्त थैली के पथरी, अपेंडिस, हार्निया, हाइड्रोसील, बवासीर, फीसर भगंदर जस पुरुष लोगन में यहाँ लिंग, ब्रे और अंडकोश और मर्दांगनी की कमी हुए समस्या साथ हैं कैंसर संबंधी सब दवाई ऑपरेशन किया जात है। और जानत हो, हाथ गोड़ करिहाव, रीढ़, टिहुनी पिराप, झंझनाहट हो, नस पिराप, झमझमाव, हड्डी टूट फूट भवा है तो दवाई और ऑपरेशन के साथ हैं प्लास्टर बांधा जात है। महिला लोगन में यहाँ सफेद पानी बहाव, महीनावारी में यहाँ गड़बड़ी, निसंतानता, गर्भवती लोगन के नियमित चेक जांच, बच्चेदानी और स्त्री रोगन के सब मेर के दवाई के साथ हैं ऑपरेशन किया जात है। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: डॉक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता, कंसल्टेंट सर्जन, यूरो सर्जन, जनरल कैंसर, मूत्र रोग तथा मृगौला रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर राहुल मिश्रा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, हार्ट जोड़नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ।
1: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, सुर्खेत रोड, आदर्श नगर, नेपालगंज 10, बांके, वन कार्यालय के नेरेन, पेट्रोल पंप के पछुए। संपर्क नंबर 081-5-31000।
4: खुल्यो खुल्यो खुल्यो
5: तपाईको आफ्नै शहर कोहलपुरमा टीवीएस शोरूम खुल्यो।
4: स्टाइल, पावर र भरोसा अब एकै ठाउँमा।
5: कोहलपुरमै पाइन्छ टीवीएस का नयाँ बाइक र स्कूटर, दमदार परफर्मेन्स र उत्कृष्ट माइलेज का साथ सेल्स सर्भिस र स्पेयर्स, सबै सुविधा एउटै छानामुनि, साथमा फाइनान्स को सुविधा पनि।
4: आजै आउनुहोस्। नेपाल अटो पार्ट्स एन्ड सप्लायर्स, कोहलपुर 11, बाँके।
5: हजुर, नेपाल अटो पार्ट्स, भरोसा को यात्रा। संपर्क नंबर 98-125-26-711 र 98-20-18-37-86। नेपाल अटो पार्ट्स, भरोसा को यात्रा।
6: चर्चा छ मार्केटमा, हाम्रो नाम घन्किन्छ।
7: अपन स्वास्थ्य के ख्याल रखब सच्चा आत्मविश्वास होए, वही से तो नेपाल परिवार नियोजन संघ बाके शाखा विगत लंबा समय से आप लोगन के सेवा में यहाँ समर्पित है।
2: हमरे यहाँ पूर्ण गोपनीयता के साथ हैं गर्भपतन, परिवार नियोजन के साधन, बच्चेदानी के मुंह और स्तन कैंसर के परीक्षण और यौन और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी परामर्श सेवा उपलब्ध है।
7: विशेष सुविधा
2: अब हरेक इतवार के दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदेश आचार्य के द्वारा विशेष परामर्श और उपचारों भी पावा जाए।
3: देर न कीन जाए, आज स्वास्थ्य परामर्श लीन जाए। पता नेपालगंज उप महानगर पालिका, वार्ड नंबर 9, रामलीला रोड, नापी शाखा के अगारी। फोन नंबर 081-5-30-598।

हाँ तो श्रोताब का किया जाए कार्यक्रम के एकदम अंत अंत में हन हमारे स्टूडियो के घड़ी में 2:52 हो गया है। तो साथी अब हम फोन भी ना ले पेबे आपके कहे सिर्फ समय नहीं है। तो साथी कार्यक्रम जो आप लोग अपने अपनी दुकान मकान खेत खरियान डाड़ पहाड़ देश विदेश से यानी सब कहूँ से आइडियो वीडियो सुना देखा जात रहा है का शेयर लाइक कमेंट जरूर करते रहा जी। तो आज के फ़ोन करे वाले साथी रहें मुन्ना सलमानी रहें जो गलत बताएं ऐसे हमरे शीश राम कोरी गलत बताएं राम किशुन जो रहें डलईपुरवा से सही बताएं राम खिलावन थारू जो ये राम खिलावन थारू गलत बताएं राम किशुन बड़े ही जो सही बताएं और इसमें मैसेज में तमाम साथी मैसेज पठाए नहीं है मगर मैसेज में सब गलत बताई नहीं मगर सबसे फर्स्ट में यहाँ राम किशुन बड़ही मगर आज के भी जीता भी हैं राम किशुन बड़ही डलईपुरवा बाके से। हाँ दोस्त कौन जीव जीव के रगत से तो होते देखो ये हो हाँ संगाला ये नहीं हमरे अवधि भाषा में कहते हैं जैसे जो नेपाली में संगाला कहते हैं और ऐसे दुई नंबर में जो रहे सही बताना है विश्व को सभी बंदा पातलो वस्तु के हो साबुन के फिजा। हाँ तो दोस्त दोनों का सही हमरे राम किशुन जी बताएं उनका बहुत बहुत बधाई है। ऐ कार्यक्रम के प्रायोजक जो जफरुद्दीन पप्पू जी हैं ज्योति टेलर के वहाँ से आपका पुरस्कार मिला है आपका राम किशुन जी टी शर्ट। तो उनका पूरे स्टाफ का ज्योति टेलर के पूरे स्टाफ का भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद है। कार्यक्रम का देश दुनिया में आइडियो वीडियो सब पठे हमारे साथी चंदा जी उनका भी बहुत बहुत लाख लाख धन्यवाद देते प्यारा से कव्वाली छोड़ते हम संचालक मियाँ जी विदा ली थे खुदा हाफिज अस्सलाम वालेकुम नमस्कार।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 3 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: आज अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतान प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर, नेपाल का अपने क्यूआर।
1: बीर डेंटल
2: नेपालगंज शहर में संचालित अत्याधुनिक सुविधा संपन्न बीर डेंटल में दांत तथा मुख संबंधी संपूर्ण उपचार काठमांडू तथा भेरी अंचल अस्पताल का अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आर के लामिछाने द्वारा उपचार गरिन्छ।
3: डाक्टर लामिछाने द्वारा गरिने विशेष उपचारहरू दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधि द्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत ताउने, पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्रा तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
2: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
3: फोन नम्बर 081-532-375।
4: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज डाइनिंग जस्ट सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे रहा है, कहाँ जाई तो ठीक रही, तनी बताई दियो हमका।
5: सुना जाए आपका हम बताई थे, आप नेपालगंज में हैं, अपने घर के खातिर, ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जात है तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब पराली में यहाँ जावा जाए। हुआ पर यहाँ आर्डर के अनुसार बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ऑफिस टेबल, ड्रेसिंग टेबल, दराज, जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है। उके साथन टिकाऊ सामान, आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथन बनावा भी जात है।
4: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथन आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जात है।
5: एक दफे सेवा करे मौका दीन जाए। संपर्क के खातिर सुर्खेत रोड नेपालगंज बांके, संपर्क नंबर 98-44-88-35-75 और 98-08-25-40-37।
6: नींद ना आए हमको, हाय जग सोता है।
4: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
7: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र जाऊ ना, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जात है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देत हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं। साथ ही कान कम सुने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसन मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
4: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
7: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे, दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बांके, संचालक पूरन चौधरी, संपर्क नंबर 98-480-2697, 98-580-2397 और 98-014-83-697।
8: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
4: भैया बहुत दिन से महिनवारी में यहाँ गड़बड़ी, सफेद पानी बहाव और पेट पीराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं, कहाँ जाए तो बढ़िया रही।
7: हम भी पहले गैस्ट्रिक, बवासीर और पेट के समस्या से बहुत परेशान रहे, बाद में यहाँ नेपालगंज के मेडिकेयर क्लिनिक गए। हुआ मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के समस्या के उपचार और ऑपरेशन एक ही जगह होत है। अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर से सेवा मिले के बाद अब बहुत आराम हुआ है।
4: सही, हुआ का सेवा मिलत है तो भैया?
7: सुनो, हुआ औरतन के बाँझपन, सफेद पानी, महीनावारी में गड़बड़ी, गर्भवती जांच, बच्चादानी और स्तन संबंधी समस्या के उपचार होत है। और पुरुष या अन्य बीमारी लोगों के खातिर गैस्ट्रिक, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, थायराइड, पित्त थैली और शरीर में यहाँ गिल्टी और तमाम मेर के लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी सेवा भी उपलब्ध है।
9: हाँ,
1: मेडिकेयर क्लिनिक में यहाँ वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक दूरबीन और लेजर सर्जन डॉक्टर कमर हसन अंसारी और वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुन निशा से सेवा देते हैं। आप भी आज कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नाम दर्ता कह के तहदिल हुआ जाए।
7: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगंज उप महानगरपालिका वाड़ा नंबर 11 बीपी चौक के नेरेन उप महानगरपालिका के कार्यालय के लाइन में यहाँ संपर्क नंबर 97 46 11 786 98 224 92 377।
9: सबके संयुक्त आवाज मेडिकेयर क्लिनिक मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य।
10: Back to back. In this song on. Stay tuned.

0: রিমিক্স গার্ল নিপা চ্যানেলের এই গানটি কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানান। আপনার ফিলিংস জানার জন্য আমি অপেক্ষা করছি। ভিডিওটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না।
1: হইনা কৌশল্যা মেমোরিয়াল অস্পতাল এই থিও তো।
2: ওহো বাজে, অব উতা আইন ঠ্যাক্কে এতা হেনস তো পূর্বপট্টি। हाम्रा सेवाहरू इन्टर्नल मेडिसिन तथा फ्यामिली फिजिसियन सेवा, हार्ट जोड्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ सेवा, नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ सेवा, प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा, नवजात शिशु तथा बाल रोग विशेषज्ञ सेवा, छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ सेवा, दाँत बङ्गारा तथा मुख सम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा, एकुपंक्चर तथा फिजियोथेरापी सेवा, चौबिसै घण्टा रोड एक्सिडेन्ट इमर्जेन्सी सेवा, चौबिसै घण्टा ल्याब एक्सरे र ख वर्गको एम्बुलेन्स सेवा, एयर कन्डिसन इमर्जेन्सी वार्ड, स्ट्यान्डर्ड वार्ड तथा क्याबिनहरू।
3: हजुर, कौशल्या मेमोरियल अस्पताल कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 हलदारपुर बाँके। सम्पर्क नम्बर 081414007 र 98482363।
4: आमाको उपचार गरौँ भनेको कहाँ जाने होला?
5: कान्ति आरोग्य अस्पताल छँदैछ नि। पश्चिम नेपालकै अनुभवी र उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शल्य चिकित्सकद्वारा विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पनि यही उपलब्ध छ।
4: हो र, यो अस्पतालमा के के सुविधा छन् नि?
5: चौबिसै घण्टा इमर्जेन्सी सेवा, दैनिक ओपिडी सेवा, दूरबीन तथा लेजर प्रविधिबाट शल्यक्रिया, जलेको घाउको उपचार गरिनुका साथै एनआइसियु, पिआइसियु, आइसियु, हाइटेक अपरेसन थिएटर र सुरक्षित प्रसूति सेवा पनि यही उपलब्ध छन्। अझ यहाँ त बालबालिका तथा नवजात शिशुहरूको सामान्यदेखि जटिल सबै रोगहरूको सबै किसिमको उपचार गरिन्छ नि।
4: त्यसो भए आमालाई लगेर आजै जानु पर्यो।
5: कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज, सबै किसिमका उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एकै छाना मुनि।
4: सम्पर्क नम्बर 081535717।
6: हाय रे दिदिया, हमार टिहुनी बहुत पिरात है, बहुत दवाई कराए डाले, नाय ठीक आते।
7: सुनो बहिनी, खुशी के खबर,
8: अब ऑपरेशन के खातिर काठमांडू और लखनऊ दौरे धूपे न पड़ी। पश्चिम नेपाल में यहाँ एकमात्र आधुनिक अल्ट्रासाउंड के सुविधा है।
7: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में यहाँ मूत्र और दिल गुर्दा रोग के सब ऑपरेशन दूरबीन प्रविधि के द्वारा किया जाता है। और वहाँ पेट संबंधी सब मेर के दवाई, पित्त थैली के पथरी, अपेंडिस, हार्निया, हाइड्रोसील, बवासीर, फीसर भगंदर जस पुरुष लोगन में यहाँ लिंग, ब्रे और अंडकोश और मर्दांगनी के कमी हुए समस्या साथेन कैंसर संबंधी सब दवाई ऑपरेशन किया जात है। और जानत हो, हाथ गोड़ करिहाव, रीढ़, टिहुनी पिराप, झंझनाहट हो, नस पिराप, झमझमाव, हड्डी टूट फूट भवा है तो दवाई और ऑपरेशन के साथेन प्लास्टर बांधा जात है। महिला लोगन में यहाँ सफेद पानी बहाव, महीनावारी में यहाँ गड़बड़ी, निसंतानता, गर्भवती लोगन के नियमित चेक जांच, बच्चेदानी और स्त्री रोगन के सब मेर के दवाई के साथ ऑपरेशन किया जात है। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
9: डॉक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता, कंसल्टेंट सर्जन, यूरो सर्जन, जनरल कैंसर, मूत्र रोग तथा मृगौला रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर राहुल मिश्रा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, हार्ट जोड़नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ।
7: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, सुर्खेत रोड, आदर्श नगर, नेपालगंज 10, बाँके। वन कार्यालय के नेरेन, पेट्रोल पंप के पछुए। संपर्क नंबर 081531000।
4: हजुरबालाई लामो समयदेखि कानको समस्या छ, नेपालगञ्जमा भरपर्दो र विश्वासिलो अस्पतालका लागि कहाँ जाने होला?
5: ए, त्यसो भए त चिन्तै लिनु पर्दैन नि। नेपालगञ्जमै रहेको बागेश्वरी कान स्वास्थ्य स्याहार केन्द्र छँदैछ नि। यहाँ त अनुभवी विशेषज्ञ तथा वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिकबाट हरेक दिन कान परीक्षण गरिन्छ। त्यति मात्र कहाँ हो र, यहाँ त लामो समयदेखि कान पाकिरहने जीर्ण रोग, काने ढुसी, कान चिलाउने, कान कम सुन्ने, कान डम्माउने बिरामीहरूको उपचार तथा परामर्श र लामो समयदेखि कान पाकिरहँदा कानको जालीमा प्वाल परेको, कान हड्डी खाने रोगको शल्यक्रिया अपरेसनबाट उपचार गरिन्छ। साथै कान कम सुन्ने बिरामीहरूका लागि कानमा लगाउने सस्तोदेखि महँगोसम्मका विभिन्न मोडेलका कानका मेसिन, हियरिङ एड बिरामीहरूको चाहना अनुसार उपलब्ध गराइन्छ। बिटिई, सिआइसी, आरआइसी जस्ता मेसिनहरू पनि यही उपलब्ध छन्।
4: ए, त्यसो भए हजुरबालाई त्यहाँ लगेर उपचार गराउँदा स्पष्ट सुन्न सक्नु होला त?
5: अवश्य, समयमा उपचार गरेपछि धेरै सुधार सम्भव हुन्छ।
4: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य स्याहार केन्द्र,
5: नेपालगंज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 6 फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक सामुन्ने राप्ती रोड बाके संचालक पूरण चौधरी
4: सम्पर्क नम्बर 9848206697 9858223697 र 9800143697
5: बहिरोपण निवारण कार्यक्रममा सहभागी हौ नियमित कानको जाँच गरौ
1: भर्ना खुल्यो
5: एस ब्राइटल्यान्ड कलेजमा शैक्षिक सत्र 2083 का लागि त्रिविबाट सम्बन्धन प्राप्त व्यवस्थापन तथा मानविकी संकाय अन्तर्गतका स्नातक तहका कार्यक्रमहरूमा भर्ना खुला भएको जानकारी गराइन्छ
1: उपलब्ध कार्यक्रमहरू ब्याचलर अफ होटल म्यानेजमेन्ट बिएचएम ब्याचलर अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी म्यानेजमेन्ट बिआइटिएम ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडिज बिबिएस ब्याचलर अफ आर्ट्स इन सोसल वर्क बिएएसडब्ल्यू
5: योग्यता मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्लस टू वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने सम्बन्धित विश्वविद्यालयले तोकेको न्यूनतम जिपिए प्रतिशत प्राप्त गरेको हुनुपर्ने
1: किन रोज्ने ब्राइटल्यान्ड कलेज
5: बिएचएम ब्याचलर अफ होटल म्यानेजमेन्ट अनुभवी शिक्षकद्वारा व्यवहारिक तथा गुणस्तरीय शिक्षा इन्टर्नसिप तथा रोजगारीमा सहयोग होटल एयरलाइन्स रिसोर्ट क्रुज लाइन लगायत आतिथ्य क्षेत्रमा आकर्षक रोजगारी र होटल फ्रन्ट अफिस फुड एन्ड बेभरेज इभेन्ट व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवहारिक ज्ञान
1: बिआइटिएम ब्याचलर अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी म्यानेजमेन्ट सूचना प्रविधि र व्यवस्थापनको उत्कृष्ट संयोजन सफ्टवेयर डेभलपर आइटी म्यानेजमेन्ट डाटा विश्लेषक लगायतका क्षेत्रमा करियर आधुनिक प्रविधि तथा व्यावसायिक प्रमाणपत्रका लागि बलियो आधार
5: बिबिएस ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडिज राष्ट्रिय विश्वविद्यालयद्वारा मान्यता प्राप्त लोकप्रिय कार्यक्रम बैंकिङ व्यवसाय लेखा वित्त मानव संसाधन तथा सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर र व्यवस्थापन वित्त बजार व्यवस्थापन र लेखा सम्बन्धी सुदृढ आधार
1: बिएएसडब्ल्यू ब्याचलर अफ आर्ट्स इन सोसल वर्क गैर सरकारी संस्था एनजिओ अस्पताल विद्यालय तथा सामाजिक संस्थाहरूमा करियरका अवसर समाज सेवा नेतृत्व तथा समुदाय विकास सम्बन्धी ज्ञान र सिप समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने अवसर
5: ब्राइटल्यान्ड कलेजका विशेषताहरू अनुभवी तथा दक्ष प्राध्यापक कक्षा कोठामा स्मार्ट प्रविधिको प्रयोग एयर कन्डिसनर एसीको सुविधा समय सापेक्ष तथा रोजगारमुखी पाठ्यक्रम इन्टर्नसिप तथा प्लेसमेन्ट सुविधा आधुनिक शिक्षण वातावरण र सफल पूर्व विद्यार्थी सञ्जाल तथा करियर परामर्श
1: नोट बिएचएम र बिआइटिएम को सिमेट फारम पनि खुलिसकेको जानकारी गराइन्छ सम्पर्क ब्राइटल्यान्ड कलेज नेपालगञ्ज 10 पासाङ लामु रोड फोन नम्बर 081532207 र 081532602 इमेल blc.npj@gmail.com वेबसाइट brightlandcollege.edu.np
3: Back to back.
10: In this song on
3: Stay tuned.

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ।
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।

0: आंखें
1: ये चेहरा ये नूर, इंसान हो या परी हो तुम, कितनी फुर्सत से बनाया होगा तुम्हें बनाने वाले ने।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी